0: Your news from here and hits from home.
1: SBS South Asian.
2: आ गले लग जाओ मेरे यार, तुम्हारा ही इंतजार है, दिल को बेहद तुमसे प्यार है।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS Hindi के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आप सुन रहे हैं वैशाली जैन को रविवार की एक ढलती हुई शाम पर. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे. आज का SBS Hindi कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों, कैमरा के राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं, जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है. दोस्तों, आज चलाएंगे जगजीत सिंह के गीतों की रेलगाड़ी और उसी क्रम में आज आपको मुझे ये बताना है कि ये जो गीत है वो कौन सी फिल्म से है, क्योंकि ये गीत भी जगजीत सिंह का है और बहुत ही पॉपुलर है. तो पहले आइए सुनते हैं इस गीत को.

आप अपने जवाब भेज सकते हैं 04397997667 पर। आज कार्यक्रम में है जवानी तो इश्क होना है फिल्म के विजेताओं के जो पासेस हैं उनके विजेताओं के नाम भी मैं घोषित करूंगी। तो आज कार्यक्रम में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे पहले प्रस्तुत करूंगी आज के संक्षिप्त समाचार। इसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में मौसम पहचानने की इंडिजिनस प्रणाली के बारे में। फिर सुनेंगे सप्ताह भर की खबरें सप्ताह के न्यूज रैप में। इसके बाद लाएंगे इंडिजिनस फैशन के बारे में रोचक जानकारी और अंत में लाऊंगे आपकी पसंद के गीत जो कि होंगे जगजीत सिंह के। भाई मैं आज इतनी सारी प्रथम राष्ट्र की चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जारी है रिकॉन्सिलिएशन वीक और आपसे मैंने पूछ लिया है कि जगजीत सिंह के कौन से गीत आपको पसंद है। 04397997667 हमारा नंबर है। साथ ही आपको मुझे बताना है कि ये जो गीत है

0: कौन सी फिल्म से है बताइए मुझे 04397997667 पर। जब तक आप मुझे भेज रहे हैं संदेश, आइए सुनते हैं आज के संक्षिप्त समाचार। पेश है आज के संक्षिप्त समाचार ऋषाली जैन के साथ। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे अपेक्षाकृत छोटे देश अपनी सुरक्षा के लिए वैश्विक रूल्ड बेस्ड ऑर्डर पर निर्भर रहते हैं। समुद्र के भीतर मौजूद महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बढ़ते हमलों की चिंताओं के बीच ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने ऑकस समझौते के तहत अनमैन्ड अंडरसी व्हीकल्स के विकास के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इनकी आपूर्ति 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और 15 अन्य देशों ने समुद्र के भीतर स्थित महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर सहमति जताई है। रिचर्ड माल्स का कहना है कि समुद्र की तलहटी पर अब रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुकी है और इस साझा चुनौती का सामना केवल सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया का लगभग पूरा इंटरनेट ट्रैफिक केवल 15 समुद्री केबलों के माध्यम से संचालित होता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को ऑकस समझौते के तहत मिलने वाली सभी परमाणु संचालित सबमरीन्स अब सेकेंड हैंड होंगी। परमाणु संचालित पनडुब्बियां ऑकस समझौते की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। सिंगापुर में रक्षा नेताओं की बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई कि ऑस्ट्रेलिया को उपलब्ध कराई जाने वाली सभी पनडुब्बियां पहले से उपयोग में रह चुकी होंगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने SBS न्यूज से कहा कि ऑस्ट्रेलिया को भरोसा रखना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑकस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाएगा और निर्धारित योजना के अनुसार पनडुब्बियां उपलब्ध कराएगा। इस बीच लेबर पार्टी की सेनेटर जेनी मैकएलिस्टर का कहना है कि पॉलिन हैंसन की पार्टी वन नेशन की बढ़ती लोकप्रियता गठबंधन की विफलताओं का प्रतिबिंब है। पॉलिन हैंसन ने संकेत दिया है कि वे अगले फेडरल चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वापसी पर विचार कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि वे प्रधानमंत्री का पद संभालने में सक्षम है। जनमत सर्वेक्षण में वन नेशन को 20% से अधिक समर्थन मिलता दिख रहा है, जबकि अगला फेडरल चुनाव 2028 की शुरुआत में होने की संभावना है। सेनेटर मैकएलिस्टर ने स्काई न्यूज से कहा कि मतदाता गठबंधन के भीतर एकजुटता की कमी और लगातार दिखाई देने वाले आंतरिक मतभेदों से निराश हो चुके हैं। दूसरी ओर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ और आसपास के इलाकों में आए भीषण तूफान के कारण हजारों घरों और व्यवसायों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मौसम की स्थिति अभी और बिगड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार ये शक्तिशाली तूफान प्रणाली आमतौर पर हर 5 वर्ष में एक बार देखने को मिलती है और पर्थ तथा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वेस्टर्न पावर के मुताबिक राज्य भर में लगभग 10,000 उपभोक्ता बिजली कटौती से प्रभावित हुए हैं। सुबह बासिल्टन जेटी पर 107 किलोमीटर प्रति घंटे और रॉटनेस्ट आइलैंड पर 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके दर्ज किए गए। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग में दिए गए अपने संबोधन में नियो मिलिटरिज्म के आरोपों को खारिज किया है। मई महीने में चाइना के विदेश मंत्रालय ने एशिया प्रशांत देशों से सतर्क रहने और जापान के कथित नव सैन्यवाद के लापरवाह कदमों का विरोध करने की अपील की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कहा कि जापान की मौजूदा सैनिक क्षमताओं को देखते हुए ऐसे आरोप हैरान करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि मंच के दौरान उनकी अपने चीनी समकक्षों से मुलाकात नहीं हो सकी। और अंत में खबरें भारत से। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 134वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित करते हुए नीदरलैंड से चोल काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाओं का भारत वापसी होना हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने देश के युवा खिलाड़ियों की उपलब्धियों की भी सराहना की और हाल में एथलेटिक्स में बने कई राष्ट्रीय रिकॉर्डों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरविंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर समेत समेत कई खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत के युवा हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों को आम पन्ना, लस्सी, छाछ, सत्तू जैसे पारंपरिक पेयों का आनंद लेने की सलाह दी और इन्हें भारतीय जीवन शैली का हिस्सा बताया। आपको बताते चले कि भारत में इस साल गर्मी के तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और कई जगहों पर 45 डिग्री से अधिक तापमान लगातार बना हुआ है। इसी के साथ 31 मई 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। संक्षिप्त समाचार के बाद वक्त हो चला है कि चर्चा करें इंडिजिनस मौसम जांचने की प्रणालियों पर। वही मैं आज के पूरे शो में इंडिजिनस प्रणालियों की, फैशन की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि चल रहा है रिकंसिलिएशन सप्ताह और हमें जानने की ज़रूरत है कि जो ज़मीन पर हम रहते हैं वहाँ का पौराणिक इतिहास, पौराणिक प्रणालियाँ क्या हैं, और ये हमें सब मिलती हैं प्रथम राष्ट्र से। सो आज उसी मौसम प्रणाली को समझेंगे। आज के शो में है जवानी तो इश्क होना है फिल्म के पासिस के विजेताओं के नाम भी घोषित करूंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। और फिलहाल सुनिए इस अंश को, इसके आगे करेंगे चर्चा। मैं लेके आऊंगी आज का क्विज भी, लेकिन इस अंश के बाद।
1: आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है।
0: आप शायद चार ऋतुओं ग्रीष्म, शरद, शीत और वसंत से परिचित होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रथम राष्ट्र संस्कृति में इनसे कहीं अधिक ऋतुओं को पहचाना गया है। स्थान के अनुसार कुछ इंडिजिनस समूह हर वर्ष 6 विशिष्ट ऋतुओं का अवलोकन करते थे। मौसम और इसकी ऋतुओं की समझ अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर समूहों के सांस्कृतिक ज्ञान का एक गहरा पहलू है जिसे दसियों हजारों वर्षों में विकसित किया गया है। मौसम जानवरों और पौधों के जीवन चक्र को प्रभावित करता है और इस परस्पर संबंध को समझना मानव अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में जहां मौसम के चरम और कठोर भूभाग मौजूद है।

0: crystals are suspended in the upper atmosphere, moonlight is refracted and reflected by the ice crystals, and it can result in the appearance of a halo around the moon. Now, even contemporary science recognizes that moon halos often precede a low-pressure system, frequently followed by rain and cooler temperatures, or within the next day or two.
1: और चंद्रमा की स्थिति में मामूली बदलाव भी गहरे मायने रख सकता है.
0: But sometimes the moon isn't in the center of that halo. It might be to one side a little bit, and that would indicate that there's some wind coming as well.
1: प्रथम राष्ट्र के लोग मौसम के ज्ञान को मौखिक कहानियों, शैल चित्रों और शैल उकेरणों यानी पेट्रोग्लिफ्स के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी संजोते आए हैं.
0: We have some petroglyphs in Sydney, quite a few to be honest, but one of them that stands out is called Moon Rock. It's got engravings of the moon. Now, these specific engravings show the eight phases of the moon, and they begin with the creator by Army's boomerang. Now, this is important because the Gadi are known as great fishers. Our women were always out at Lorraine, Sydney Harbour, on their nowies, fishing with a small fire and often children in tow. So when we use the moon to fish, we know that the first and last quarter of the moon is probably the best time to be fishing. And the reason for this is that a new or full moon will stir up the tides. They'll be a little bit stronger. They'll move that sediment on the seafloor and also make it a little bit harder to see the fish.
1: ऑस्ट्रेलिया का जलवायु बहुत विविध है, जिसमें ट्रॉपिकल मॉनसून, रेगिस्तानी गर्मी और अल्पाइन ठंडियां शामिल हैं। हर क्षेत्र की अपनी अनूठी ऋतुएं और लय हैं। आज के इस अंश में हमने जाना कि इंडिजिनस समुदायों के लिए ऋतुएं तिथियों से नहीं बल्कि पौधों और जानवरों की पर्यावरणीय प्रतिक्रियाओं से परिभाषित होती है। ये दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया की जलवायु को समझने का एक समृद्ध और अधिक सूक्ष्म नजरिया प्रदान करता है, जो सामान्य चार ऋतु वाले मॉडल से कहीं अधिक व्यापक है। ये इस बात की भी याद दिलाता है कि इंडिजिनस संस्कृतियों के भूमि के साथ गहरे संबंध और उनके ज्ञान और परंपराओं को समझना कितना आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के संच को SBS न्यूज से फिल ट्यूसैक और SBS हिंदी से प्रशाली जैन ने प्रस्तुत किया।
2: ये एक SBS ऑडियो पॉडकास्ट था। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के और दूसरे पॉडकास्ट के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं।
3: और इस अंश के बाद वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लेकर के आऊंगी सप्ताह भर की खबरों का एक टाइट सा न्यूज रैप। लेकिन मैंने आज आपसे पूछा है कि ये जो गीत है वो कौन सी फिल्म का है, बताइए मुझे 04397997767 पर। आपके इंतजार में हूँ, गीत सुना रही हूँ, फिर ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के उस पार सुनेंगे सप्ताह भर की खबरें, बने रहिए वृशाली के साथ।

0: 20 को समाप्त होने वाले सप्ताह का न्यूज रैप वृषाली जैन के साथ। वन नेशन अध्यक्ष पॉलिन हैंसन का कहना कि वे बन सकती हैं प्रधानमंत्री। ऑकस समझौते में मानव रहित पनडुब्बी वाहनों के विकास पर काम करने की हुई घोषणा। और फीफा 2026 वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया के दल की घोषणा होगी जल्द। और अब सप्ताह भर की खबरें विस्तार से। वन नेशन पार्टी की नेता पॉलिन हैंसन का कहना है कि उनमें ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है और यदि मौका मिला तो वे एक प्रभावी मंत्रिमंडल का गठन कर सरकार चला सकती हैं। उनकी दक्षिणपंथी यानी राइट विंग पार्टी के लिए बढ़ते समर्थन के बीच सेनेटर हैंसन ने कहा कि वे प्रधानमंत्री पद की संभावना को खारिज नहीं करती। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि ये कहना मुश्किल है कि उन्हें कभी ये अवसर मिलेगा या नहीं। स्काई न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मैं ये जिम्मेदारी निभा सकती हूँ, मैं खुद को कम नहीं आंकूंगी। मौजूदा नेतृत्व को देखकर ही समझ आता है कि देश किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपने त्रिपक्षीय रक्षा समझौते ऑकस के तहत मानव रहित पनडुब्बी वाहनों के विकास पर साथ मिलकर काम करने की घोषणा की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने सिंगापुर में बताया कि ये परियोजना ऑकस के पिलर 2 कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके तहत क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, हाइपरसोनिक और समुद्री रक्षा तकनीकों का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत ऐसे मल्टी मिशन मानव रहित अंडरसी वाहन विकसित किए जाएंगे जो समुद्री अभियानों में सहयोग करेंगे और साझेदार देशों की सामूहिक समुद्री क्षमता को मजबूत बनाएंगे। साल 2021 में स्थापित ऑकस समझौते को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना के बढ़ते प्रभाव के जवाब में देखा गया था। वहीं चाइना ने इस समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर गिरिधरन सिवरमन ने 27 मई को फेडरल सरकार से राष्ट्रीय नस्लवाद विरोधी ढांचे को जल्द लागू करने की मांग की। मानवाधिकार आयोग ने लगभग 18 महीने पहले देश की पहली राष्ट्रीय नस्लवाद उन्मूलन योजना जारी की थी। इस योजना में कार्यस्थलों, कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया और कला सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए 63 सिफारिशें शामिल की गई थी। सीनेट एस्टिमेट्स की सुनवाई के दौरान सिवरमन ने कहा कि उन्हें अब तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया या समय सीमा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि समाज में मौजूद हर प्रकार के नस्लवाद का प्रभावी ढंग से सामना करना और उसे समाप्त करना बेहद आवश्यक है। वहीं फेडरल सरकार ने रोजगार सेवाओं की व्यवस्था में पिछले 3 दशकों का सबसे बड़ा सुधार पैकेज घोषित किया है। वर्कप्लेस मंत्री अमांडा रिश्वत ने नेशनल प्रेस क्लब में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नई व्यवस्था के तहत नौकरी तलाशने वालों को उनकी जरूरतों के अनुसार 3 स्तरों में सहायता प्रदान की जाएगी। मौजूदा म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस प्रणाली को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आ रही थी। राष्ट्रमंडल लोकपाल की 2 रिपोर्टों में ये भी पाया गया कि नौकरी खोज संबंधी शर्तें पूरी नहीं करने पर कई लोगों की कल्याणकारी भुगतान राशि निलंबित करना संभवतः कानून के अनुरूप नहीं था। लेबर सांसद डॉक्टर मिशेल आनंदा राजा ने इन बदलावों का स्वागत करते हुए उन्हें लंबे समय से लंबित बताया। वहीं ग्रीन्स पार्टी की सरकारी सेवाओं की प्रवक्ता पेनी ऑलमन पेन का कहना है कि प्रस्तावित सुधार पर्याप्त नहीं है और इससे आगे जाने की आवश्यकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हाल के वर्षों में सबसे गंभीर डिप्थीरिया आउटब्रेक से पहली मृत्यु की पुष्टि 26 मई को हुई। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अप्रैल में हुई इस व्यक्ति की मृत्यु का संभावित कारण डिप्थीरिया संक्रमण था। नॉर्दर्न टेरिटरी के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी पॉल बर्गस का कहना है कि नई प्रयोगशाला जांचों से इस संबंध की पुष्टि हुई। हालांकि व्यापक टीकाकरण अभियान के बाद आउटब्रेक के केंद्र नॉर्दर्न टेरिटरी में नए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। ये खबर लिखे जाने तक देश भर में डिप्थीरिया के 260 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि 1991 के बाद अब तक के सबसे अधिक मामले बताए गए हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनॉम गेब्रियोसिस ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला आउटब्रेक से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने लोगों से समय पर उपचार लेने और सुरक्षित अंतिम संस्कार प्रक्रियाओं का पालन करने की अपील की। कांगो में ये इबोला का 17वां आउटब्रेक है और बीमारी की पहचान होने के बाद से देश का तीसरा सबसे बड़ा प्रकोप माना जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण के मामले वैश्विक प्रतिक्रिया की गति से अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच ब्राजील ने भी साओ पोलो राज्य में इबोला के एक संदिग्ध मामले की जाँच शुरू की है। बताया गया है कि संबंधित व्यक्ति हाल ही में कांगो से लौटा था और उसे एक विशेष अस्पताल में पृथक रखा गया है। और अब खबरें भारत से सप्ताह भर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पड़ोसी देशों और रक्षा सहयोग को लेकर इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑंग लाइंग भारत पहुंचे। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है जिसमें सीमा सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। रक्षा क्षेत्र में भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण समझौता किया। इसे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। भारतीय रक्षा क्षेत्र में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभालने की तैयारी में है। वहीं भारत के वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के एक कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जहां उनके काफिले पर अंडे और पत्थर फेंके गए। व्यापार मोर्चे पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपने समकक्ष के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को लेकर चर्चा की। वहीं क्षेत्रीय तनाव के बाद पहली बार एक LNG टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए रवाना हुआ जिससे ऊर्जा आपूर्ति को लेकर राहत की उम्मीद बढ़ी। खेल जगत में IPL 2026 का फाइनल अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। उधर जापान में आयोजित 24 घंटे की एशिया ओशिनिया अल्ट्रा रनिंग चैंपियनशिप में भारत ने खिताब बरकरार रखा जबकि अमर सिंह देवांडा ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और मौसम की बात करें तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भीषण गर्मी जारी है। कई इलाकों में तापमान 45 से ऊपर बना हुआ है जिससे स्वास्थ्य चिंताएं बढ़ रही हैं। और अंत में खबरें खेल जगत से। फीफा विश्व कप की सह मेजबान टीम मेक्सिको के खिलाफ होने वाले मैत्री मुकाबले से पहले सोकरूस के कोच टोनी पॉपोविच अपनी टीम की अंतिम तैयारियों का आकलन करेंगे। पासिडाना के रोज बोल स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले के बाद पॉपोविच अपनी अंतिम 26 सदस्यीय टीम की घोषणा करेंगे। फिलहाल प्रशिक्षण शिविर में 30 खिलाड़ी शामिल हैं। अन्य कोचों के विपरीत पॉपोविच ने अंतिम टीम का चयन पहले से नहीं किया। उन्होंने विस्तारित दल के साथ प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, कुछ खिलाड़ियों को बाहर किया और बाद में कुछ नए खिलाड़ियों को शामिल किया। रिपोर्टों के अनुसार जो खिलाड़ी अंतिम टीम में जगह नहीं बना रहे हैं उनसे पॉपोविच व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर रहे हैं। इसी के साथ 30 मई 2026 को समाप्त होने वाले सप्ताह का न्यूज रैप यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों अब समय आ गया है कि ये है जवानी तो इश्क होना है के जो फिल्म पासेस थे उनके जो विजेता हैं उनका नाम घोषित कर दिया जाए। तो सबसे पहले नाम है मनोहर सिंह महल जी का, फिर हैं जफर साहब, फिर हैं गरिमा गुप्ता, फिर योगेंद्र राणा और फिर नितिन गुप्ता। मैं नाम फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, है जवानी तो इश्क होना है कि फिल्म के जो डबल पासेस हैं उनके 5 विजेता हैं हमारे पास, मनोहर सिंह महल, जफर, गरिमा गुप्ता, योगेंद्र राणा और नितिन गुप्ता। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं नाम फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी, लेकिन आपके कुछ संदेश मेरे पास आ गए हैं क्योंकि हम चला रहे हैं एक छोटा सा क्विज कॉम्पिटिशन भी, और उसके सही जवाब मुझे सबसे पहले भेज दे कुमार जी ने, और उन्होंने अपनी एक फरमाइश भी भेजी है जो मैं आपके लिए अभी बजाती हूँ। जिसके बाद मेरे पास क्रिगी बर्न से राजेंद्र वोरा जी का भी संदेश आया है जिन्होंने मुझे बताया है कि होठों से छू लो तुम जो गीत है वो कौन सी फिल्म का है, वही तो आज का सवाल है।
1: और अनीता त्यागी जी ने भी सही जवाब भेजा है मेलबर्न से। इसके अलावा हर्षवर्धन सिंह जी लिखते हैं, हेलो SBS एंड वृशाली, होप यूर ऑल वेल, प्लेजर इज ऑलवेज लिसनिंग टू यू एंड ऑलवेज अमेज बाय द ब्रॉडकास्ट, ह्यूज थैंक्स टू यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन फॉर ब्रिंगिंग द बेस्ट टू द कम्युनिटी। द आइकॉनिक सॉन्ग होठों से छू लो तुम इज अ क्लासिक हिंदी सॉन्ग फ्रॉम द 1981 फिल्म। देखो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जब मैं क्विज लेकर के आती हूँ तो मुझे ही कुछ नई जानकारी मिल जाती है उस पर्टिकुलर गीत के बारे में। और देखिए उन्होंने आपको एक और हिंट दे दिया कि ये जो फिल्म है 1981 की है और इसे कंपोज भी जगजीत सिंह साहब ने ही किया था। और इस फिल्म में राज बब्बर और अनीता राज ने एक्टिंग की थी, वे इसके लीड थे। तो बहुत कुछ बता दिया, अब तो फिल्म का नाम आपको बताना है बस। और इसी के साथ आइए सुनते हैं जगजीत सिंह जी का ये गीत जो हमें रिक्वेस्ट किया कुमार साहब ने।

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: SBS News In Depth Podcast, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS News In Depth आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं।
5: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
4: चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह है स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम SBS फूड चैनल 33 पर 2400 घंटे।
6: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ भाई, है जवानी तो इश्क होना है फिल्म के मूवी पासेस के जो विजेता हैं उनके नाम हैं मनोहर सिंह महल, जफर गरिमा गुप्ता, योगेंद्र राणा, नितिन गुप्ता। और आज मैंने आपसे एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछा था कि ये जो गीत है उसके फिल्म का क्या नाम है।

0: इस गाने के फिल्म का नाम आपको मुझे बताना है। बहुत सारी हिंट्स मैं आपको दे चुकी हूँ और इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा कुछ और इंडिजिनस फैशन के बारे में, प्रथम राष्ट्र फैशन के बारे में। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है लेकिन इसके पीछे के जो सांस्कृतिक महत्व हैं वो समझना ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं इस अंश को। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा भी समय बिताया है तो आपने यहाँ का आरामदेह पहनावा जरूर देखा होगा। हर जगह लोग एक्टिव वेयर, सर्फ ब्रांड्स और कैजुअल कपड़ों में नजर आते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई फैशन की एक और अहम पहचान भी है जिसके बारे में देश में नए आने वाले लोगों को अक्सर शुरुआत में ज्यादा नहीं पता होता। अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर डिजाइनर हजारों सालों से कपड़े और आभूषण बनाते आ रहे हैं और ये परंपरा आज भी पूरी तरह से जीवित है। आज आप इनके डिजाइन रनवे पर, दुनिया भर के फैशन कैंपेन्स में और रोजमर्रा के कपड़ों में भी देख सकते हैं। इस एपिसोड में आप जानेंगे कि प्रथम राष्ट्र फैशन को क्या अलग बनाता है, ये प्रकृति और पर्यावरण से कैसे जुड़ा है और आप प्रथम राष्ट्र डिजाइनरों का समर्थन कैसे कर सकते हैं। उपनिवेश से पहले ऑस्ट्रेलिया भर के प्रथम राष्ट्र लोग अपने मौसम, पर्यावरण और जीवन शैली के अनुसार पहनावे विकसित कर चुके थे। लोग क्या पहनते थे उससे उनकी पहचान और उनका जन्म क्षेत्र और उनका संबंध समझा जा सकता था। आज भी कई प्रथम राष्ट्र डिजाइनर फैशन को इसी नजर से देखते हैं, एक ऐसी अभिव्यक्ति के रूप में जो कहानियां, संस्कृति और धरती के प्रति सम्मान को रोजमर्रा की जिंदगी में साथ लेकर चलती है। लंबे समय तक अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर फैशन मुख्य धारा के मीडिया में बहुत कम दिखाई दिया। मिशनों, स्कूलों और सरकारी नीतियों के जरिए पश्चिमी शैली के कपड़ों को बढ़ावा दिया गया, जबकि प्रथम राष्ट्र लोग अपने पारंपरिक पहनावे की संस्कृति को समुदायों और समारोहों में जीवित रखते रहे। पिछले दशक में ये स्थिति बदलनी शुरू हुई है। इस बदलाव को करीब से देखने वालों में डनगुट्टी और अनाइवान समुदाय से जुड़ी क्रिएटिव यातु विडर्स हंट है। वे ऑनलाइन समुदाय ऑस इंडिजिनस फैशन की संस्थापक हैं।
1: As I was a teen, I was also looking for ways to connect to my own identity and also to contemporary expressions of First Nations identity, and I found fashion was a really great way to do that. When I was like a teen, like it was just not even mentioned in fashion magazines at all, wasn't really accessible to consumers.
0: आज प्रथम राष्ट्र डिजाइनर, मॉडल और कलाकार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा दिखाई देते हैं और वे भी अपनी शर्तों पर। वाजुक नुंगार मॉडल नेथन मैग्वायर मॉब इन फैशन के संस्थापक हैं।
2: That's what it's all about. That's, you know, that's about our people being seen and our beauty being appreciated in the country. And, you know, it's actually meant to happen.
0: तो क्या है जो फर्स्ट नेशंस फैशन को अलग बनाता है? कई प्रथम राष्ट्र ब्रांड अपने काम को कहानियों से जुड़ा हुआ या कंट्री से संबंधित बताते हैं। यहाँ कंट्री का मतलब केवल जमीन नहीं बल्कि भूमि, पानी, आकाश, समुदाय और संस्कृति सब कुछ से है। डिजाइन अक्सर खास जगहों, भाषाओं या सांस्कृतिक विचारों से जुड़े होते हैं। प्रिंट्स प्रथम राष्ट्र कलाकारों की कलाकृतियों से लिए जाते हैं और कलाकारों को पूरा श्रेय और भुगतान दिया जाता है। कई ब्रांड धीरे और सोच समझ कर काम करते हैं, छोटी कलेक्शन जारी करते हैं जिससे सतत उत्पाद और अच्छी गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है। ऐसे ही काम करने वाली एक डिजाइनर है योलनू क्रिएटिव डायरेक्टर लियांड्रा गाइकमांगू। वे रिजॉर्ट वेयर ब्रांड लियांड्रा की संस्थापक और मालिक हैं।
3: We have always championed color, culture and joy, really using fashion as an open invitation for other people beyond our community to be able to engage and celebrate the diversity of Australia's identity and cultural nuances through the brand. We have always done our own custom prints. So from the very beginning, I've always drawn our prints, and every collection has a theme attached to it, and those prints then embody the theme.
0: अगर आप कपड़ों का टैग पढ़ें या वेबसाइट देखें तो अक्सर कंट्री या समुदाय से जुड़ी कहानी को पढ़ सकेंगे। पारंपरिक प्रथम राष्ट्र पहनावा केवल जरूरत भर संसाधनों का उपयोग करता था और जानवरों और पौधों के प्रति सम्मान दिखाता था। आज कई प्रथम राष्ट्र ब्रांड इन्हीं विचारों को आधुनिक फैशन में अपनाते हैं। वे बेहतर सामग्री चुनते हैं, कचरा कम करते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन से बचते हैं और कलाकारों व कारीगरों के साथ निष्पक्ष संबंध बनाते हैं। प्रथम राष्ट्र ब्रांड से खरीदारी कर उपभोक्ता संस्कृति और पर्यावरण दोनों का समर्थन कर सकते हैं। फर्स्ट नेशंस फैशन रोजगार और कौशल के अवसर भी पैदा करता है। अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर स्वामित्व वाले ब्रांड डिजाइनर, मॉडल, स्टाइलिस्ट, फोटोग्राफर, पैटर्न मेकर और प्रोडक्शन टीमों के लिए काम के मौके बढ़ाते हैं। लियांड्रो अपने ब्रांड के जरिए दूर दराज और क्षेत्रीय समुदायों को फैशन इंडस्ट्री से जुड़ने के अवसर देती हैं।
3: I'm very passionate about remote and regional Australia, and so the brand is a pillar and a bit of a vessel to be able to tap into and out of remote and regional Australia for creative Indigenous people. We've had models signed to top Australian agencies, walk international runways, go on to book incredible campaigns beyond and create their own economic independence then beyond what we sort of opened the door to.
0: जिन समुदायों को कई उद्योगों से लंबे समय तक दूर रखा गया उनके लिए इस तरह की ट्रेनिंग और भुगतान वाला काम मजबूत करियर बनाने में मदद करता है। राष्ट्रीय स्तर पर या तो बताती हैं कि फर्स्ट नेशंस व्यवसाय पहले से ही अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: It's important to support First Nations businesses as well. We have a really thriving and growing First Nations business sector. We have designers and artists working all across the country, including in remote areas. So you're also supporting First Nations business by buying First Nations fashion.
0: अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नए हैं तो आप प्रथम राष्ट्र फैशन के साथ सम्मान पूर्वक कैसे जुड़ सकते हैं? यहाँ कुछ आसान सुझाव हैं। कई प्रथम राष्ट्र ब्रांड साफ तौर पर बताते हैं कि कौन से डिजाइन एलाय फ्रेंडली यानी जिन्हें कोई भी पहन सकता है ऐसे हैं। कुछ कपड़े या वस्तुएं जो आमतौर पर समारोह या विशेष सांस्कृतिक भूमिकाओं के लिए होती हैं, केवल अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए होती हैं। इन्हें आमतौर पर स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाता है। कई ब्रांड डिजाइन के पीछे के कलाकार समुदाय और कहानी के बारे में जानकारी भी साझा करते हैं। इसकी जानकारी आप टैग या फिर ऑनलाइन पर देख सकते हैं। यातु इसके बारे में और बता दी है।
1: So the majority of First Nations designers create work that is accessible to everyone, so not just Indigenous people. And I think it is exciting because First Nations storytelling is actually central to Australian identity. And I think our culture is extremely generous and warm, and we love and want people to feel proud of that, and we see that as central to everyone's identity.
0: Nathan मानते हैं कि fashion परिधान प्रवासी समुदायों से जुड़ने का एक मजेदार तरीका हो सकते हैं.
2: It's another way to experience culture and share in all the different nations that make up this country's stories. As an extension of what it is to be a part of like Australian culture, this is a good way to engage with our community. I think there's so much exploration for that for people who are, you know, new to our country and want to get to know our people more, and they can do it in a really like modern, cool way. And then there's also the really traditional historical story. You get the best of those worlds in our fashion space.
0: शुरुआत में आप फर्स्ट नेशंस डिजाइनरों और मॉडलों को सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं या किसी फर्स्ट नेशंस रनवे शो या प्रदर्शनी में शामिल हो सकते हैं। आप प्रथम राष्ट्र ब्रांड से खरीदारी कर सकते हैं, खासकर वे वस्तुएं जो एलाय फ्रेंडली के रूप में चिन्हित की गई हों। ये संस्कृति को समझने और इस देश की गहरी कहानियों से जुड़ने का एक सुंदरतम तरीका है, उस चीज के जरिए जिसे हम सभी साझा करते हैं, यानी हमारे पहनने वाले कपड़े, हमारे परिधान। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश को SBS न्यूज से निकिया हचिंग्स और SBS हिंदी से प्रस्तुत किया वृषाली चैन ने। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का, और अंतराल पर जाने से पहले मेरे पास कुछ संदेश आए हैं. जफर साहब लिखते हैं, हाय वैशाली जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द पासेस, द कंपटीशन आई थिंक इज थैंकिंग अस फॉर. थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट वंस अगेन, थैंक्स टू SBS हिंदी. एंड पल्लवी सराफ लिखती हैं कि हेलो वैशाली जी, नाइस प्रोग्राम, आंसर टू टुडेज क्विज विच वॉज होठों से छू लो तुम गीत कौन सी फिल्म का है, मैंने आज आपसे पूछा था और उन्होंने सही जवाब भेजा है, और जफर साहब ने भी हमको सही जवाब भेजा है. आपको ब्रेक के बाद सही जवाब बताती हूँ, ये गीत सुनाती हूँ और चलाऊंगी गीतों की रेलगाड़ी. किसकी? जगजीत सिंह के गीतों की. तो बने रहिए SBS हिंदी पर, कहीं मत जाइएगा. बस यूं गई और यूं आई, अभी हाजिर होती हूँ.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: Channel 33 par SBS Food, jo parosta hai, सबसे स्वादिष्ट जगह है. स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम. SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे.
9: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें. sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: और ब्रेक के बाद सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज की जो क्विज थी, होठों से छू लो तुम गीत था, वो है प्रेम गीत फिल्म का, 1981 की फिल्म है. और अब आइए बिना किसी देरी के इस गीत को सुनते हैं. साथ ही आपके लिए लेकर के आऊंगी जगजीत सिंह के और भी गीत इसी के बाद. तो गीतों की रेलगाड़ी नॉनस्टॉप अब चलती रहेगी. इसी के बाद वैशाली आपसे ले लेगी आज के लिए इजाजत. अपना ध्यान रखिएगा.

0: SBS South Asian.
1: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है, आदत से नहीं।

0: SBS South Asian.
1: जी गुरी

0: तू वो जा रहा है कोई शबगम पुकार वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास तुम क्या गए के रूप गए दिन बाहर
1: SBS kick off a new music station celebrating football anthems from around the world It starts the 1st of June on DAB Radio, the SBS audio app, online and SBS on demand.

0: जैसे मैं खेल रहा लुका छुपी और छुप गया मार्स पे और मुझे कोई देख नहीं रहा। ये चोरी किया मैंने रानी हार को बनके मिस्टर इंडिया और मुझे कोई देख नहीं रहा।
1: टेंशन सारी छोड़ दी ओए, आज कमी ना हो शोर की ओए, हाँ मुझे डांस आया आया बड़ी जोर से।
0: आज

गौर से सुनिए आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक अतरंगी भूत की कहानी, कभी नहीं सुनेगी आप ऐसे कहानी। नानू के पीछे पड़ी है ये भूत, उसके बिस्तर में

रट्टी हो गया सारी सोनिया टोल वाले नचण दे तेरे साउंड ते लक हिलाना पैर फ्लोर पे

पुष्पा पुष्पा पुष्पा।

0: SBS South Asian.
1: Hami, it's you again.

0: Bollywood.
1: I love Bollywood music.
2: Kicking the morning off the right way. An hour of the best in Bollywood hits. Starting now. It's the Bollywood Session on SBS South Asian.
3: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

का सरूर होगा, मुझे छोड़ गया तो क्या हुआ, आदत से मजबूर होगा, अल्लाह कसम यकीन है मर जाओगे, जो हमारे साथ किया आपके साथ भी जरूर होगा, आपके साथ भी जरूर होगा।